0: रमेश, क्या तुम्हें यहाँ इम्फाल में पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता?
1: क्यों नहीं जाओबा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो?
0: तुम भी बता रही थी कक्षा में कि तुम बाहर जा रहे हो।
1: अभी तो वार्षिक परीक्षा भी नहीं हुई है और मम्मी पापा ने

0: भी कुछ नहीं बताया।
1: तुम्हारी दीदी जो बाहर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है ना, सुना है वे तुम्बी के भाई के दोस्त हैं। आपकी पिताजी और माँ दोनों सरकारी नौकरी में है ना, इसलिए तुम्हारी दीदी तुम्हें उसके पास रखकर पढ़ाई करवाने की बात कही है।
0: मेरी दीदी तो अपनी परीक्षा खत्म होते ही मुझे लेने आ रही है।
1: अच्छा,
0: लेकिन चाऊबा, मुझे नहीं जाना,
1: क्यों?
0: यहां मुझे ज्यादा मजा आता है। अगर मैं यहां से चला गया तो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा।
1: हाँ,
0: तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो और गृह कार्य भी तो हमेशा मैं तुमसे ही मदद लेता हूं।
1: रमेश,
0: आज भी अध्यापक ने तुम्हें कहा है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो।
1: फिर भी जो भी फैसला बड़ों ने लिया है वे हमारे भलाई के लिए है, उनकी बात मानना पड़ेगा। रमेश, अगर तुम चले जाओगे तो ऐसे हम दोनों स्कूल साथ साथ नहीं जा पाएंगे।
0: मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगा। हम दोनों एक ही कॉलेज में एक ही विषय लेकर साथ साथ पढ़ेंगे।
1: रमेश, तुम तो घर पहुंचकर नाश्ता करोगे, ट्यूशन का टीचर आएंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे।
0: हाँ,
1: लेकिन मैं तो घर पहुंचते ही हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी कर माँ के साथ पढ़ाई करूँगा।
0: अच्छा,
1: मेरी माँ प्राथमिक स्तर के अध्यापिका है, इसलिए शाम को तो वे खाली रहती है, मैं तो ट्यूशन नहीं लेता।
0: चौबा, अब मैं चलता हूँ, मेरी वैन आ गई है, कल फिर स्कूल में मिलेंगे।
1: हाँ,
0: बाय बाय।
1: बाय, ठीक से जाओ।
2: अरे, मेरा बेटा तो स्कूल से लौट आया है, थक गए होंगे बेटा।
1: हाँ माँ।
2: चलो आओ, बैग मुझे दो, बहुत भारी भी है तुम्हारा बैग।
1: हाँ माँ।
2: इसीलिए सरकार ने हर शनिवार को नो बैग डे घोषित किया और बच्चों को बिना बैग के स्कूल जाने दिया। अरे, एक पुस्तक के साथ एक नोटबुक, बच्चों के शरीर की बनावट खराब कर देता है ये। नन्हे नन्हे कांधे भी खराब हो सकती है। मुझे तो सरकार का ये नियम बहुत अच्छा लगता है। चलो आओ बेटे, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो।
1: माँ, मैं खुद कर लूंगा।
2: ठीक है ठीक है, मैं खाना तैयार करती हूँ।
1: जी माँ।
2: चाऊबा।
1: माँ।
2: आओ, पढ़ाई करते हैं।
1: जी।
2: क्या आज का कोई गृह कार्य नहीं है?
1: क्यों नहीं माँ, है ना, मणिपुर के निवासी कबुई जाति का पर्व गांगाई के बारे में पढ़ाइए।
2: चलो ठीक है, पढ़ते हैं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, तबीयत खराब है क्या?
1: नहीं तो।
2: ठीक नहीं लग रहे, स्कूल में दोस्तों के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ क्या?
1: ऐसा कुछ नहीं हुआ है माँ, तबीयत भी बिल्कुल ठीक है।
2: तो उदास से क्यों हो?
1: हाँ, मेरे खास दोस्त रमेश, आप जानती हो ना?
2: हाँ, उसको क्या हुआ है?
1: वो तो इस साल के वार्षिक परीक्षा खत्म होते ही उसकी दीदी जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है ना, उसके पास पढ़ने के लिए चला जाएगा।
2: इसलिए तुम इतनी दुखी हो इतनी देर से?
1: हाँ।
2: चलो, पढ़ाई करने के लिए बहुत से लोग बाहर जाते हैं।
1: अच्छा।
2: चिट्ठी के सहारे बातचीत होते रहते हैं।
1: हो?
2: फोन पे भी कभी कभी बात कर लेते हैं। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है बच्चे, मैं हूं ना आपके लिए, अब जमाना भी बदल गया है।
1: माँ, मैं अब खुश हूँ, मेरी प्यारी माँ। अब कहानी सुनाओ माँ।
2: हाँ,
1: कबुई जनजाति के गांगाई पर्व के बारे में।
2: चलो सुनाती हूँ आपको गांगाई की ये कहानी।
1: हाँ माँ।
2: मणिपुर में बहुत सारे जनजातियां निवास करते हैं, उनमें से कबुई जनजाति एक है। एक वर्ष के अंदर उनके बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, उनमें से गान गाए कबुई जनजाति

0: का सबसे बड़ा पर्व है।
1: माँ,
0: हाँ
1: गांगाई कबुई जाति का सबसे बड़ा त्योहार क्यों है? एक वजह तो होगी कि क्यों ये त्योहार सबसे प्रसिद्ध है।
0: हाँ बेटा, ठीक कहा आपने। मैं भी इतनी गहराई से नहीं जानती, लेकिन ऐसा कहते हैं कि गान गाय कबुई जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है।
1: ओ माँ,
0: हाँ,
1: ये पर्व कब मनाया जाता है?
0: ये जो पर्व है ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। ये 5 से 7 दिन तक मनाया जाता है।
1: ओ अच्छा।
0: पहले दिन गांव के बुजुर्ग लोग गांव के रक्षक रागौर नामक देवता को सुअर की बलि चढ़ाकर पूजा करते हैं और उस देवता से वर मांगते हैं। उसी दिन शाम को गांव के युवक युवतियां अपनी परंपरागत वेशभूषा में भाला लेकर ढोलक बजाकर गांव भर में घूमते हैं।
1: ओ अच्छा।
0: उसके बाद देवता के सामने खुले मैदान में पत्थर फेंकना, भाला फेंकना, उछल कूद, कुश्ती आदि करते हैं। रात को युवक अपने घर जाकर खाना पकाते हैं और धान की देवता को मुर्गा मुर्गी चढ़ाते हैं।
1: माँ,
0: हाँ बेटा,
1: उसके अगले दिन कौन से कार्यक्रम होते हैं?
0: उसके अगले दिन युवक युवतियां बुजुर्ग सभी अपनी परंपरागत रंग बिरंगी वेशभूषा पहनकर साथ में नाचते गाते हैं।
1: तो माँ, कबुई जाति का गांगाई तो बहुत मजेदार त्योहार है।
0: हाँ, ये उन लोगों का बहुत मजेदार त्योहार है। एक जगह ऐसा है जहां सिर्फ युवक ही बैठते हैं, उसे पाखंगफान कहते हैं,
1: अच्छा।
0: और लैशाफान वह स्थान है जहां सिर्फ युवतियां बैठ सकती हैं।
1: अच्छा माँ, देखो बुआ आ गई। देखो तो प्रवेश द्वार से आ रही है।
0: हाँ, अरे सोनिया।
2: जी भाभी।
0: अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई, मैं घर के कुछ काम कर लेती हूँ। तुम कपड़े बदल कर चाउब के साथ थोड़ी देर बैठ लो, मैं चली।
2: ठीक है भाभी। चाओ,
1: जी बुआ।
2: क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ
1: हाँ बुआ, आप थक गई होगी, पहले दूध पी लीजिए, फिर साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे।
2: ना बाबा ना, मैं दूध नहीं पीऊंगी।
1: क्यों?
2: दोस्तों के साथ बहुत खा लिया आज तो। वैसे तुम्हारी कहानी किस विषय में है?
1: वही कबुई जनजाति का त्योहार गांगाई।
2: अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार कहानी है।
1: हाँ
2: इसमें बहुत सारे नाच गान होते हैं। ये वर्ष के धान की फसल काटने की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। तू बैठ, मैं कपड़े बदल के आती हूँ।
1: जी बुआ।
2: चाओ बा,
1: जी बुआ।
2: माँ ने कहाँ तक पढ़ाया?
1: युवक युवतियों का एक साथ नाचना और बुजुर्गों द्वारा फसल की देवता का पूजा, यही तक बताया।
2: गांग आई के नाम सुनते ही मुझे तो नाचने का मन बहुत करता है।
1: अच्छा बुआ।
2: नाच गान के बाद गांव के बुजुर्ग लोग अगले वर्ष की फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: ओ अच्छा।
2: इस पूजा को लंपट नहीं कहते हैं।
1: लंपट नहीं।
2: हाँ, अगले दिन युवक युवतियाँ एक दूसरे को उपहार देते हैं, फिर विदाई लेते हैं। ऐसे गांगाई मनाते हैं।
1: बुआ,
2: हाँ
1: गांगाई तो बहुत मजेदार त्योहार है ना।
2: हाँ बहुत मजेदार है। दूसरी जातियों की भी कई त्योहार है। मैं जब खाली रहूंगी तब बताऊंगी।
1: जी बुआ। बुआ,
2: हाँ बोलो।
1: समय इतने जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। मेरे प्यारे दोस्त रमेश अपनी बहन के पास चले गए, 3-4 महीने हो गए।
2: अरे बाबा, तुम्हारे बातों से याद आ गई,
1: क्या
2: रमेश ने तुम्हारे नाम एक चिट्ठी भेजी
1: चिट्ठी
2: थी।
1: भेजी थी?
2: हाँ, कल बताने वाली थी, मैं काम में इतनी व्यस्त थी तो भूल गई, मेज पर रखी है।
1: ओ रमेश,

0: तू मुझे प्यार तो करता है। बुआ देखते हैं क्या लिखा है।
1: मैं धीरे से खोलती हूं।
0: जी
1: क्या लिखा है उसने?
0: पर ये
1: प्यारे दोस्त चाओबा, कबुई जाति के पर्व गानगाय के बारे में थोड़ा लिखकर भेजना।
0: बुआ जो माने और आपने बताया वो सब लिख लेता हूं।
1: हाँ,
0: अंत
1: लिखो।
0: में कैसे लिखना है वो मुझे नहीं आता, आप मुझे समझा दीजिए।
1: हाँ, समझाती हूँ। तो सबसे पहले प्यारे दोस्त रमेश
0: प्यारे दोस्त
1: से शुरू
0: रमेश।
1: होगा,
0: अच्छा
1: फिर तुम्हारी चिट्ठी मुझे मिल गई है लिखना, और उसके बाद गांगाई के बारे में लिखना।
0: के बारे में।
1: हाँ, अंत में लिखना है कि दोस्त, मेरे यहाँ सब कुशल मंगल है। आशा करता हूँ कि तुम्हारे वहाँ भी सब कुशल मंगल होंगे। अन्य त्योहारों के बारे में जानना हो तो कहना, मैं फिर लिखूंगा। फिर चिट्ठी के दाहिने तरफ तुम्हारा प्यारा दोस्त कैसाम चाउबा सिंह लिख दो, और चिट्ठी पूरी हो गई।
0: ठीक है बुआ, अब तो सब समझ में आ गया है, तो मैं लिखता हूं और चिट्ठी डालने तो हम दोनों चलेंगे।
1: हाँ, बिल्कुल, हम दोनों साथ साथ चलेंगे।

कुमजा लिसिंग में जमा पल भुतरा मा थोईदा आकाशवाणी इंफाल की एप्रूव सैरेंग बमा ओखी आकाशवाणी इंफाल की सैरेंग बमोइना नंदलाल रोय की इसई कया सैसक पा सैसक पी कया न सखरे हौजिक सु सखनरी।

नंदलाल रोय की मयेकता सैसकपी खांगेमबम राजेश्वरी सकपा इंग्लिश सिंगनी कुलहमदोई की फेब्रुआरी था की था सी इसे अमुक तामिनसी

ताहन जकरी बा इसे इसी लकीफुर की लकीप्यारी फिल्म में सिद्धगी रणवीर धौना के नायक कुंजल दा रोशन सरोखाइबम ने सैरिंग बा समूरो बिना सैरंग भी सैनी इसे इसी बुखोइदा विदुन खन भी रखते बा मरुप सिंह दी इरम सिपाही दिगी दोन दोन भी लंथोई बा अतुम मदी अथोई बा हाइदुना इविरई नसी की दमकत दी गुड मॉर्निंग मणिपुर थोरम इसे इसी ताहन जकी बगल लोइनना मतांग असे लोइसिंजरी एसएमएस था भी रखतुना थोरम सरुक या भी रखी बा मपुंग फान भी रखी बा मदी थोरम हाउ बुदगी ना लोई वफाउ बता भी रही बा पुनमक पसु अमुकन थगत पफुंग दोग जरी

0: ishe sigiluna na tangka kase de sendok jab gate matanga sida luchin jare
1: papa laiye 3000
2: kyon bhai
1: meri pocket money
2: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है
1: ए पापा बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो डिजिटल पेमेंट चलाओ है नहीं हाँ सीधे यूपीआई से पेमेंट करो इट्स इजी
2: अरे वाह मुझे भी सिखाओ अपने 1000 ले जाओ
1: अपना मोबाइल लाओ
2: ले ले
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान
4: हर लेन देन अब है आसान
5: बदलो बदलो आदत बदलो
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
5: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: तुंगन तुंगन पर थरम सिंह संदुक तुने तहनजरी बसी आकाशवाणी फल एफएम संगाई चने दगिनी मकाताब नुवाइर पर थरम सिंह गिदम बेमो दसिनजरी
7: Tagachari Manisana Akaswani Imphal ki Sangai channel ki thorum tabi riba khwai khudingbu taram no ukchari ikogno na khurumchari Pokpa hingba shiba Taibang punsi machatta awaba amadi nungaibana mapok amaga amaga khenaba manadaba punsi ki mahing pibiri Adubu haijaningi pokning wakhal leitaba punsina malem sida ख्वाइदगी लाइबुक फवा मपोनी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक संदोकचरी रेडियो लीला युमसी कनाना लेफोनी लीला इबा बिमोलचान मंगशाताबा लीला पुथोकपा निंगथौजम लोकेंद्र जिचिंग अमदी पुथोकपुदा टिंगबांगबा सुभाष अथोकपम हौजिक लेजरे रेडियो लीला युमसी कनाना लेफोनी

0: मुई नरम लगा मसा सिंगू इंजीनियर डॉक्टर ओ है लक्की बा
1: मानी से मामा के
0: मसा सिंगी मपाल सार नि खंजरबा अदुगी ओ न तैना बदा पुजारी गई को या निना ई माग पाबुंगा दा अन्ने यंग बिकी दबा लांग बिकी बा चिरम दा ये उरो पाऊ दा आई को ये पान अब तक कनबा कम न कम न साबवारी दो लोन तुम्हें न तारो बदगे आई कोई से उसी की ज्ञान तार एने
2: हैं
0: हाँ क्रम लग जे की भाई राल सिंह दो निंकी फ्लोवल तम हो ये से कहाँ है इमा का पामुंगा नी के ले माउरी बपुन सी ऐसी तरी लग जे की भाई राल दो कर दो और बसु कोक्सना बा ऐ कोई पुन ना मुकुन में नरसी ने इनाउसा
1: असीम बने इमा पाबुंगा ऐ कोई याम नलाल करे ले माउरी भाई इमा पाबुंगे पुन्सी ऐसी तती ऐ कोई बुसिया बा पंगन भी ओ ना कोई अनी ना मता ममता ऐ कोई ना ऐ कोई गीत खन्ना लन तांसिन की चंजाओक शागत की यमसी पाव बमुन की Ado masih di penamat to kali suka naram tu. Ita ibu blood cancer dan ada.
2: Tamu coba itu mah.
1: Last stage sore. Nak kau kita mau ya ekweni. Mita angang amat tau udre. Aisyu sole. Madi. ग्रीपीज तो अगता अनिरक शोरे
2: तमो याई शोई ते मा
1: आउम लग शो बदा दी करे होई गानी खंग्रे इसे मगी शो नपीन हक्ता ने अनिमा निरोला मगी तुम दी इमों से धार मुलाव रगानी मुन्नरम भयुम से कनाने ले पिहाव बनी ना कोई चुसत करनो इमा पाबुंग चुपुवी करनो आई कोई पन्ना मुक्ता ले मिना सीखाई दो बगे इनाउ
0: यूं मचे मचिन बनाओ होंगी इमा हम पाबुंग ने साबी बनी ने इनाउ सा आई कोई हम पन्ना नुंची जाना ना ले मिना रची ने ना कोई सो ना कोई चुसत करनो ने ना कोई चुसत कर बदी ना कोई ने सक्रम दे यम से कनानले पौवने यम से कनानले पौवने गे

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: ता बिरोबा
1: ताजे ताजे
0: गुड आफ्टरनून लेडीज थोरम दादों बतारामुक चेरी खाना होय बिरोबा ना
1: हाँ थावे ना नहीं दिन व दिन का होय
0: थावे बंदगी ता फ्यू करी करी ऑफ
1: आज कनोगी और कोई आते हैं तो पत्नी अंते थे इनके माय ने गए थे आ वो ये आ अभी वैसे ही था वो ये नहीं कटे तो मैंने नहीं फूक अपना पीवा तो नुआई जैसे फिर वहाँ
0: अमुक तंगा हन भी होगा कोई लाइन से नुआई तब नंबर अम्म वाले का कोई कॉल से तट करे मतंगे कॉल अम्म आई मिनस से हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड आफ्टरनून लेडीज सॉरी मैं दोनों बता रहा हूँ चेरी कहाँ हुई बिरोबनो
1: हेलो ताबीब्रा
0: ताज़ेरे ताज़ेरे मिंगली फ़ोन तक पियो
1: आई
0: कोंपाल दगी भैगवती होय भैगवती तराम तराम लोग चली थोड़ा सीता करी करम वापम सिंह पुंग तो पी गनी
1: था
0: जब जो नुआई जाए आई आहान बतेंग ना बमान इसा आई के सुलाई ऊपर बने आहान बतेंग ना जब बने है ना
1: आई ने हाइजनिंग बजे ना सी चलाऊं कुंजर लाग बजे दा हो कि मतम जो दा साता गई ना होना गिबा मायाम दो अतो की वाखलों दो नसी की साता गई जो चेल हनिंगी अतो ने मखोई वो इको नो ने खुरम जरी ना हाइजनिंग बसा
0: होय कोई खुदी मंग ना काउ पद्रबा एको गिरम द मसिकी पुवारी द इदुना हक्तुना लेखरबो काउ बया रोय दबा थौदुक सिंग ने मसिक एको ने खंग ना चत पाहाय बसिना मखा तारक पोय रिबा एको खुदी मग की काउ पद्रबा तौ पद्रबा थौदांग गु ने हायनासु थमजरी कॉल तो भी रखपा याम नमक नुआई जे अतो पो आपम सिंह थम भी गदा बदले री ब्रा
1: मतंग जामु तो जरा के साथ मसीह की तो जरा के साथ
0: होय होय अतो क्योंकि थोड़ा मसीह शिद्द तो मुक चांग नहीं ना ताबी ब्रा हेलो
1: अदम ताई हाय पारे था आग चांग बदा अदम ताजे था
0: होय होय याम नमक नुआई जे कॉल तो भी रखपा थोड़ा मसरू क्या भी मथंग की थोरम दम थे थकचरे दम मथंग कॉल गाय भी नो ना इस मखल खुचरी अयुब की लिखला फिल्म की पुष्परानी की खुंजल रोमी मैटे सैरंग सोरी सेंजमना सैरंग इसनी

धन्यवाद भीमो। यह आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाईखोम सिंह खेगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है सदाबहार गीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म तीसरी मंजिल से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में इस गीत के साथ। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत राहुल देव बर्मन का।

अभी आपने सुना फिल्म ज्वेलथीफ से किशोर कुमार का गाया गीत, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत सचिन देव बर्मन का। साथियों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के शंघाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म सीआईडी से मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त का गाया गीत, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत ओपी नैयर का।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म प्यार ही प्यार से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का।

चंद्रमुखी कौरी मख पेंब नाइद भी अरब मनपुरी मतम इसे खुदोल अरयद लखुचरी अहब बोर्मनी खोजलता कमलाकांता लाइसमना सैरेंब मतम इसे।

आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल की थोरम ताबिरी बसिंगबो अमुक कहना तराम नुकचरी इकोनोंचरी हाउजिक पुंखों में सीधा मुक पूर्ण लागचरी मणिपुरी फिल्म से सिंग खुदोल की अहमद लखोचरी हंदक तक नौ न खंगना बा फिल्म से दगी पुष्परानी अमदी रणबीर थोमना अनि के पुंब खोंचल दा रोधिका हैंगांग ना सैरेंग बा अमदी सॉरी सेंजम ना सैरांग बा फिल्म से नी इसे खुदोल तमजरी पुन्ना तामिल सी

0: रसन म्यूजिक तबीरी थोरम सुंदुक्तुने तहंजरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल नी हौजे नुंगछिल की पुंग हुम तारे मणिपुरी द पाओ तबीरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल हंगबो मानथोइन पाओ पाजरी नेशनल स्पोर्ट्स डे के मरी लेना खेलो इंडिया डायलॉग ऐसी मणिपुर यूनिवर्सिटी की कोर्ट हॉल पांगथोखरे एनएसएस सेल मणिपुर यूनिवर्सिटी अमसुंग माई भारत इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने सिंधु पांगथोखपा थोरम अदुदा एमएलए करम श्याम ने हाय इंग लिसिंग अनी निफु तरेट फावद भारत पुमा पुंग फाना सौखटपा लेबाक विकसित भारत ओहेनबगी पांदमदा लेबा असीगी साना खोटनबगी लम निंथिना सेमगनबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना खेलो इंडिया स्कीम असी हौदोखिबनी स्कीम असी बुसिंथार अदुना महांगना हाय स्पोर्ट्स ऑफिसियल सिंह स्कीम असी थमोई सेंगना अमदी नियम चुमना पांगथोकप तंगाई फदे थोरमदुदा राज्य की यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स की सेक्रेटरी एन प्रवीण मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर हेमंत कुमार अमदी अतै ऑफिसियल सिंह सरुक याखी जिरीबाम जिला दसु खेलो इंडिया डायलॉग की थोरम असी पांगथोकी जिरी कॉलेज की एनएसएस यूनिट ने सिंधुना पांगथोकप थोरम असीदा डेपुटी कमिश्नर अरविंद हंगलेम एडिशनल डेपुटी कमिश्नर अमसुंग जिरी कॉलेज की प्रिंसिपल सरुक याखी हूँफूमाथो सूब चकलाम खोसेट नुमी ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एम सून सिंधुन पांगथोली अयु अगन हूं इम्फाल की मौम क्या याकायरोल सकना थोरम हौदोखी इम्फाल की पिसुम चिंगा मचाद महरोई खुबमद्रबी मौमद कैखुमब उत्खी तुंग डी एम यूनिवर्सीटी कैंपस एम सू हेड क्वाटर्स फाउबा मियाम की रैली चतखी तुंग मियाम की मीफम पांगथोखी जिरीबाम जिला दसु नुमित असी की पालन थोरम पांगथोखी महिरोई सिंगना नुमित असी की मरी लेना खोंसा चलब मतुंग मियाम की ओइबा मिफम अमा पांगथोखी जिरीबाम जिला दा सिक्योरिटी फोर्स ना लंबी दा सरोग सिंग चेक तौबदा गारी अनीदगी यु फागले जिरीघाट तगी जिरीबाम बाजार तमना लाकपा अल्टो कार अमदी ऑटो रिक्शो अमदगी लुपा लाख मरी लिसिंग निफू रोंग की ममल ओइगदबा इंडियन मेड फॉरेन लिकर फागतखिबनी फागलब यु सिंग अदु पुलिस ना जिरीबाम जिला की एक्साइज डिपार्टमेंट ता सिनख्रे हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेबा साना खोनबगी लमद हेन खोमंग चौसिनब मतंग चुनब मौंद सेमगनब लेप लेतन होनरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सिंग अमदी ट्रेनिंग सेंटर सिंग लिंखतुना हैथोई सिंथोरब सानारो क्या पुथोकनब थौरांग तौरी नेशनल स्पोर्ट्स डे गमरी लेनना पांगथोकप खेलो इंडिया डायलॉग थोरमदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा वा गांगलदुना प्रधानमंत्री ने हाई सानब हाइबसी तक

0: नुपी की थोरम दे ता बिखरे लिशिंगनी कुनमरी की संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी आर के थम्बाल सना का उन दिनों वरी साबा उनवी की भी अयकपम प्रियोबला थोरम पुथोकपा थोकचोम प्रेनुबला
1: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में अरे वाह
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांथुक चरी रेडियो क्लास चमरी हुमफुम दो शुभ तंकता क्लास 8 की हिंदी तरातरित शुभ परा आजाद हिंद फाउस थौरमसी समग्र शिक्षा मणिपुर की टेंबांग लोनना संदुक चबनी तहन जगदोरी तंकसी नरंग अगस्त की तंग कुंतरुक अयोग की पुंग तरुक मिनी निम्फूद संदोकतना तहन जखीब खुदों चादब खरदगी मपुंग पाना संदोक पंगमजदबगीदमकता पुंफम असिद अमुक हन्ना लांथुक चरी हौजु लौबीरसी रेडियो क्लास चमरी हुंफोम दो शुभ तंकल

0: हमारे भारत में अनेक महान और प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं। हमारे मणिपुर राज्य में भी अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान देने वाले अनेक वीर पुरुष हुए हैं। इसलिए भारत को अनेक वीरों की जननी कहा जाता है। भारत के कुछ महान वीरों के नाम हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि हैं। मणिपुर के कुछ वीरों के नाम हैं वीर तिकेंद्रजीत, थंगाल जनरल, पोंगना ब्रजवासी, चिंगलेन सना तथा हीजम इराबोत आदि।
1: बेमा,
0: हाँ?
1: तुम क्या पढ़ रही हो? कई लोगों के नाम भी हैं।
0: मैं तो ऐसे ही पढ़ रही थी। जो मैं पढ़ने वाली हूँ ये वो लेशन या वो पाठ नहीं है पिताजी।
1: अच्छा, तुम जो पढ़ने वाली हो उस पाठ का क्या नाम है?
0: पिताजी, उस पाठ का नाम है आजाद हिंद फौज। आप जब बाहर आएंगे तब आपके साथ पढ़ने का सोचा था।
1: अच्छा,
0: इसलिए आपका इंतजार।

0: इंतजार करते करते मैं दूसरा पार्ट पढ़ रही थी।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी दीदी ने भी मुझे आजाद हिंद फौज के बारे में लिखकर भेजने के लिए फोन पर कहा था।
0: अच्छा,
1: बहुत बढ़िया। अब एक तीर से दो निशाने का काम हो जाएगा।
0: कैसे?
1: अर्थात तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारी दीदी का काम भी हो जाएगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाऊंगा और तुम अपनी दीदी के लिए इसके बारे में लिखना। लिख पाओगी ना?
0: क्यों नहीं पिताजी, ये तो बहुत आसान है। पिताजी, आप मुझे अच्छी तरह पढ़ाइए, फिर मैं लिख लूंगी।
1: अच्छा बताओ, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी?
0: ये तो बहुत आसान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी।
1: शाबाश, मेरी बेटी तो बहुत सयानी निकली। अच्छा बताओ, इसकी स्थापना किस साल और किस तारीख को हुई थी?
0: वो तो मैं भूल गई पिताजी, मैं बता नहीं पाऊंगी।
1: तो सुनो, मैं बताता हूँ। आजाद हिंद सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी।
0: अच्छा?
1: और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
0: पिताजी, आजाद हिंद फौज का मणिपुर में प्रवेश कब हुआ?
1: आजाद हिंद फौज ने 18 मार्च 1944 को म्यांमार की ओर से मणिपुर में प्रवेश किया था। इसका नेतृत्व कर्नल शौकत अली मलिक कर रहे थे।
0: अच्छा?
1: वे अपने सैनिकों के साथ मणिपुर पहुंचे थे। उन्होंने 14 अप्रैल 1944 को मोयरांग में तिरंगा झंडा फहराकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।
0: पिताजी, उस समय मणिपुर भी अंग्रेजों के अधीन था ना?
1: हाँ बिल्कुल सही, उस समय मणिपुर भी अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना शासन स्थापित किया तो धीरे धीरे उन्होंने मणिपुर को भी अपने अधीन कर लिया। स्वाधीनता प्रेमी मणिपुरी जनता ने आजाद हिंद फौज की खुले दिल से सहायता की थी। हेमाम थंबालजाओ सिंह ने आजाद हिंद फौज का कार्यालय बनाने के लिए अपना पुश्तैनी घर दान कर दिया था। इस बात की चर्चा आज भी मणिपुर के लोग करते हैं। अन्य लोगों ने भोजन की व्यवस्था करने और सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य किया। उनसे जो बन पड़ा उन्होंने उसी प्रकार आजाद हिंद फौज की सहायता की।
0: मणिपुर के लोग बहुत दयालु और देशभक्ति है न पिताजी?
1: हाँ,
0: उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की सहायता की थी। वास्तव में हमारी मातृभूमि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है।
1: हाँ हाँ,
0: कहा जाता है कि पृथ्वी हमारी माता है और मातृभूमि से बढ़कर हमारे लिए कोई स्थान नहीं होता। पिताजी, मैं जो कह रही हूँ क्या वह सही है?
1: बिल्कुल सही मेरी बच्ची।
0: पिताजी, आगे की कहानी सुनाइए ना, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ।
1: तो सुनो, अब आगे की कहानी सुनाते हैं। ध्यान से सुनना।
0: हाँ हाँ जरूर।
1: जब तुम बड़ी हो जाओगी तब भी इन बातों को हमेशा याद रखना।
0: हाँ पिताजी, मैं ध्यान से सुनूंगी। स्कूल में भी गुरुजी कहते हैं कि मैं बहुत सयानी हूँ और पाठ को हमेशा याद रखती हूँ।
1: अच्छा, तो तुम मेरी सयानी बेटी निकली।
0: हाँ।
1: सुनो, आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में तो बता दिया ना? आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले 10 दिसंबर 1941 को ज्ञानी प्रीतम सिंह और कैप्टन मोहन सिंह की बैठक से जन्म था।
0: अच्छा।
1: यह बैठक उत्तरी मलय के चित्र नामक स्थान के पास एक जंगल में हुई थी। इस बैठक के परिणाम स्वरूप मोहन सिंह ने अपने 54 साथियों के साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन

0: समर्पित करने का संकल्प लिया था।
1: ऐसा?
0: हाँ, उन्हें ही इस मुक्ति सेना का जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनाया गया था।
1: ओ।
0: जब जापानी सेना ने सिंगापुर पर विजय प्राप्त कर ली, तब युद्ध में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के अधिकार में सौंप दिया गया था।
1: पिताजी, हमारे देश के सैनिक अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं ना?
0: हाँ,
1: वे अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार रहते हैं।
0: हाँ मेरी बच्ची, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। अंग्रेजों ने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे।
1: हाँ वो तो है।
0: उन्होंने भारतवासियों का भला नहीं किया, बल्कि भारत को अपने अधीन रखकर उसका शोषण किया। इसलिए भारतवासियों के मन में उनके प्रति गहरा रोष और नफरत थी।
1: हाँ।
0: लोगों ने संकल्प लिया था कि एक ना एक दिन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। नेताजी ने महिलाओं की भी टुकड़ियां बनाई और उन्हें प्रशिक्षण दिया।
1: अच्छा?
0: इन वीरांगनाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए पूरे दिल और जान से काम किया। चाहे पुरुष हो या महिलाएं, सबका एक ही नारा था।
1: पिताजी, वह नारा क्या था?
0: उनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद।
1: अच्छा।
0: और आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। इन नारों से उस समय आसमान गूंज उठता था। महिलाओं की इस रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था और इसकी कमान कप्तान लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। बहादुर लक्ष्मी ने इन महिलाओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित किया।
1: पिताजी।
0: हाँ हाँ।
1: क्या लड़ाई में नेताजी सफल हुए थे?
0: नहीं, पूरी तरह से सफल तो नहीं हुए, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को प्रज्वलित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। उन्होंने भारतवासियों के दिलों पर विजय प्राप्त की थी।
1: तो पिताजी, उनके असफल होने का कोई कारण तो होगा?
0: हाँ, इसके कई कारण थे। सैनिकों को बहुत दूर से आना पड़ता था। कई सैनिक बीमार हो जाते थे। खाने और हथियारों की कमी थी। इन्हीं कारणों से वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए।
1: अच्छा।
0: कई सैनिकों के बीच रास्ते में मृत्यु हो गई और कुछ तो अपने घर लौटना पड़ा। इसलिए नेताजी अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सके। नेताजी का एक बहुत प्रसिद्ध नारा था।
1: वो क्या था पिताजी?
0: ये, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने भारतवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाई और इसी कारण नेताजी आज भी लोगों के दिलों में अमर है।
2: इबे माँ, अब तो गला सूख गया होगा। बाबा से पूछो कि क्या मैं चाय लेकर आऊं।
1: जी माँ। पिताजी, माँ चाय लाने के लिए पूछ रही है।
0: हाँ क्यों नहीं, अच्छे अच्छे सिनेमा घरों में भी सिनेमा देखते समय इंटरवल जरूर होता है। माँ से कहो कि वह चाय ले आए, गला पूरी तरह सूख गया है।
2: चाय आ गई, ये लो, ये आपके लिए है। बे माँ, तुम्हारे लिए ये रहा, गिर न जाए, ठीक से पकड़ना।
1: पिताजी, देखो माँ की चाय बहुत गर्म है और देखने में भी बहुत बढ़िया लग रही है।
0: हाँ मेरी बच्ची, तुमने बिल्कुल सही कहा, चाय बहुत बढ़िया है। तुम्हारी माँ चाय बनाने में अव्वल है, सचमुच बहुत अच्छी चाय बनी है।
2: अच्छा, मैंने नहीं, ये तो मसालों का कमाल है। दूध भी बुआ थरो की गाय का है, जो बहुत अच्छा दूध देती है। और
0: अच्छा?
2: चाय की पत्ती भी खुशबूदार वाली है, इसलिए चाय इतनी बढ़िया बनी है।
0: सुनो, तुम थंबो की यहाँ शादी में नहीं गए थे ना?
2: अरे मैं भूल गई।
0: अरे
2: परसों तो बात हुई थी ना, मोहल्ले में शादियाँ एक साथ हो रही है, इसलिए सुबह

0: शगुन दे देंगे। भूल गए क्या?
1: हाँ हाँ ठीक है, मैं उनके यहाँ होकर आता हूँ। तुम इबेम के साथ रहना और उसे थोड़ा पढ़ा देना।
0: जरूर।
1: मैं चलता हूँ।
0: हाँ ठीक है, पैसे तो है ना तुम्हारे पास?
1: हाँ थोड़े बहुत हैं।
0: इबेमा।
2: जी माँ।
0: बाबा चले गए, अब तुम मेरे साथ पढ़ो। कहाँ तक पहुँचे?
2: माँ देखो, आज का हमारा पाठ है
0: हाँ
2: आजाद हिंद फौज।
0: ओह, ये मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है ना?
2: हाँ माँ। मैं कुछ पूछूँ माँ?
0: बोलो।
2: आप जवाब दे सकोगी?
0: अच्छा, पहले प्रश्न तो पूछो। प्रश्न सुनने के बाद देखेंगे कि मैं जवाब दे पाऊंगी या नहीं।
2: तो माँ बताइए, आजाद हिंद फौज का आदर्श क्या था?
0: ये तो मुझे पता है।
2: अच्छा?
0: आजाद हिंद फौज का आदर्श था एकता, विश्वास और त्याग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में इन आदर्शों को अपनाकर काम किया और लोगों को देश की आजादी के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी।
2: माँ
0: हाँ,
2: नेताजी ने भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था ना?
0: हाँ बोलो।
2: वह है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सही है ना माँ?
0: हाँ सही है, नेताजी ने ये नारा देशवासियों को दिया था। देशवासियों ने ये नारा लगाया।
2: माँ मैं समझ नहीं पाई।
0: ठीक है मैं समझाती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाद में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। उसके बाद उन्होंने सिंगापुर में सैनिकों की भव्य पैरेड की सलामी ली और इतिहास प्रसिद्ध नारा दिया, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। आज भी ये नारा भारतीयों के कानों में गूंजता है।
2: हाँ माँ अब स्पष्ट रूप से समझ गई हूँ। उनके बचपन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए ना।
0: बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान थे। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। उनके पिताजी उस समय के प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई।
2: माँ क्या वे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे?
0: हाँ पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जो भी उन्हें पढ़ाया जाता था वह उसे अच्छी तरह याद रख लेते थे। लगभग हर परीक्षा में वह अव्वल आते थे। बाद में उन्होंने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा भी पास की।
2: तो क्या उनके पिताजी का सपना पूरा हुआ?
0: हाँ हुआ, वह एक उच्च पद पर नियुक्त भी हुए। लेकिन वहाँ उन्हें अंग्रेज सरकार के अधीन काम करना पड़ता था।
2: ओहो।
0: उन्हें ये स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद उस पद से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों की गुलामी से घृणा करते थे।
2: तो माँ वे इतने प्रसिद्ध क्यों हैं?
0: क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और
2: तो
0: देश को आजाद कराने के लिए अथक प्रयास किए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण उन्हें जेल में भी डाला गया।
2: अच्छा ऐसा भी हुआ था?
0: हाँ वह कुछ समय तक जेल में रहे, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट करके रखा गया।
2: ओहो।
0: उनके घर के चारों ओर अंग्रेजी सेना तैनात थी। वह बहुत चतुर थे और अपनी बुद्धि, साहस तथा योजना बनाने की कला में निपुण थे। नेताजी लोगों की नजरों से ओझल हो जाने में भी माहिर थे।
2: तो माँ फिर वे कैसे अंग्रेजों की कड़ी निगरानी से बचकर बाहर निकले?
0: इनके लिए ये मामूली सी बात है। कड़ी निगरानी और अंग्रेजी सेना की तैनाती के बावजूद

0: बावजूद वह चतुराई से घर से निकल गए और अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे।
1: ये तो अच्छा हुआ माँ।
0: उन्होंने अपना भेष बदल लिया और एक पठान के रूप में घर से निकले। अंग्रेज सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाए। इस तरह वह उनकी निगरानी से बचकर निकल गए और अपने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये सब उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए किया, इसलिए वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध और सम्मानित है।
1: हमारे गुरुजी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस लोगों की नजरों से ओझल हो जाते थे। क्या इसका मतलब यह है कि वो भगवान की तरह किसी को दिखाई नहीं देते थे?
0: नहीं बेटी, अदृश्य होने का ये मतलब नहीं है कि वह भगवान की तरह दिखाई नहीं देते थे।
1: अच्छा।
0: इसका मतलब ये है कि वह किसी भी रूप का वेश धारण करके लोगों को चकमा दे सकते थे। रुको, इसी बात से मुझे याद आया कि तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे पापा को लिखकर भेजने के लिए कहा था ना?
1: हाँ माँ, पिताजी ने मुझे लिखने के लिए कहा था। मैं लिख लूंगी।
0: क्या तुम लिख पाओगी?
1: जी माँ, भूल गई तो आपसे और पिताजी से पूछ लूंगी। कल लिखूंगी।
0: हाँ जरूर।
2: वे माँ।
1: जी पिताजी।
2: कहानी खत्म हुई क्या?
1: नहीं पिताजी,
0: ज्यादातर कहानी खत्म हो गई है।
2: अच्छा।
0: आजाद हिंद फौज से जुड़ी अधिकतर घटनाएं तो पूरी हो चुकी है। आजाद हिंद फौज ने भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता की चेतना जगाई थी, है ना?
1: हाँ माँ। पिताजी।
2: हाँ हाँ।
1: आपने मोइरंग जाने की बात कही थी ना?
2: हाँ।
1: तो चलो चलते हैं ना?
2: हाँ हाँ जरूर, कपड़े बदल लो।
1: नहीं, इसी में ही चले जाएंगे। माँ को भी साथ में ले चलते हैं ना?
0: मैं तो नहीं आऊंगी, घर के सारे काम बाकी है। तुम अपने पिताजी के साथ चले जाना।
1: ठीक है माँ, हम चलते हैं। पिताजी, हम मोइरांग में जाकर नेताजी मेमोरियल देखेंगे ना?
2: हाँ हाँ जरूर देखेंगे। चलो कार में बैठो।
1: जी पिताजी।
2: हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, निंगथोखोंग से मोइरांग तो नजदीक ही पड़ता है।
1: माँ हम चलते हैं।
0: हाँ हाँ अच्छे से जाना।
2: हमारा घर निंगथोखोंग में है ना?
1: हाँ पिताजी।
2: इसलिए मोइरांग यहाँ से पास पड़ता है। देखो हम मोइरांग पहुँच गए हैं, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ।
1: ठीक है पिताजी। देखो यह गेट दीदी की सहेली रेनू के घर का है।
2: हाँ।
1: गाड़ी यही गेट के पास खड़ी कर देते हैं और फिर चलते हैं पिताजी।
2: हाँ हाँ यही ठीक रहेगा, आओ चले।
1: पिताजी ये हाँ, रही नेताजी की मूर्ति।
2: हाँ यही है।
1: वाह ये तो बहुत सुंदर है। इसके चारों ओर दीवार भी बनाई गई है। पिताजी नेताजी के मूर्ति को इस तरह बनाकर और चारों ओर से घेर कर क्यों रखा गया है?
2: बेटी ये नेताजी का सम्मान और उनकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। इससे लोग उनके महान कार्यों को याद रखते हैं और ये स्थल एक स्मारक के रूप में सुरक्षित रहता है।
1: पिताजी इन लोगों ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखकर रखा है ना? इसलिए ये लोग भगवान के समान हैं।
2: हाँ बेटी तुम सही कह रही हो, इन महान देशभक्तों ने देश के लिए बहुत बड़े बड़े त्याग किए थे, इसलिए लोग आज भी उनका आदर और सम्मान करते हैं। अच्छा अब तुम अपनी दीदी को चिट्ठी लिख पाओगी?
1: हाँ पिताजी अब मैं जरूर लिख पाऊंगी। हाँ चिट्ठी लिखने का नियम तो आपको ही बताना पड़ेगा।
2: हाँ हाँ ये तो बहुत आसान है, ऐसे लिखना जैसे मैं तुम्हारी दीदी को लिख रहा हूँ।
1: अच्छा।
2: सबसे पहले लिखना प्रिय बेटी, उसके बाद जो कुछ भी लिखना हो वह लिखना। अंत में लिखना यहाँ हम सब कुशल मंगल है, आशा है तुम भी कुशल मंगल होगी। फिर दाहिनी तरफ लिखना तुम्हारे बाबा और उसके नीचे मेरा नाम कृष्ण लिखना। सबसे नीचे स्थान का नाम निंगथोखोंग और तिथि लिख देना। ये हो गया चिट्ठी लिखने का।

0: नियम
1: जी पिताजी, पिताजी अब घर वापस चलते हैं। सब कुछ भी देख लिया, मैं कल लिखूंगी, आप मेरी गलतियां सुधार देना।
0: हाँ हाँ जरूर, आओ वापस चले।

0: अंगोमचा सिंखई की मैयता वारेपम कुमार खुमचाना सैसकपा मतम से मताबिरी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मुगलौबी मंगलईबागता इरीपाक इरमदम थोरम लांथुकरीब युमनाम बब्लू थोरम पुथोप नोंथोंबम रोमा
1: नोंथोंबम रोमाना पुथोप मंगलईबागता इरमदम थोरम लांथुकरीब युमनाम बब्लू

फिल्म सेगे कुदोल के हम सुबह दलों को चरी थोई भी फिल्म सिद्धगे हमों सदानंद अमर यार के नंदे सॉरी अनि के पुन्ब कोंचल दा ब्रोजेंड्रो वहिंग चान सेरिंग बा गोपी अमरी सोलेंड्रो न सेरांग बा इसे नी दामिनसी

0: मणिपुरी फिल्म से ताबिरी थोरम से दुख तुनता हंजरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल नी हौजिक नुमिदा वायरम की पुंग मंगा तारी मणिपुरी दा मरोय बपाउ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पाउ की मरोय बपाउ दा नेशनल स्पोर्ट्स डे गमरी लेनना खेलो इंडिया डायलॉग नसी मणिपुर यूनिवर्सिटी की कोर्ट होल्ड पंथोखरे एनएसएस सेल मणिपुर यूनिवर्सिटी अमसुंग माय भारत इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नसिनबनी सांदेल जिला दा एनीमिया मुक्त भारत की मतंग दा ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम अमंग असी जिला असी की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा पंथोखरे नोंमगी ओइबा थारोम असी एनीमिया मुक्त भारत की मिजे मखा दा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी सांदेल नसिनबनी कक्सिंग जिला दा हंदक नौना पेपर ब्लॉक थादुना सेम की बलंबी सिंह एमएलए रामेश्वर ने मियाम द सिनखरे कक्सिंग लाइथगोल अमसुंग पुंगटिंग परिंग द सेमगत पर लंबी अदु मसीदगी मियाम न सथोक सिसिन तौब हौखरे कक्सिंग गी हानगी एमएलए खेत्रीमयम इराबो सिंह लेखिदबगी तरामथो सुब कुमोन पालन थरम मसी जिला सिद लेबा अंगान सिंह इको पार्क त पंथोखरे थरमदुगी सरुग अम ओइना खेत्रीमयम इराबो मेमोरियल कॉम्प्लेक्स त उचारा क्या थाखी security force na jiri ghat gi jiri bam bazar tam na lakpa alto car ma di auto rickshaw ma dagi lupa lakh mari lising ni phurong gi mamal oi gada ba indian made foreign liquor phagat ki bani phagat laba using adu police na jiri bam jila gi excise department ta sinakre haidi kendra gi youth affairs samsung sports mantri mansukh mandavia na hai pradhan mantri narendra modi gi lamjing makha da sanaba gi lam ase leba ase gi yam na maru oi ba lam ama oi ba tana tana नहा सिंह शक्ति पीरी अफब मखल की स्पोर्ट्स इको सिस्टम सेमगनब की पांदम केंद्र सरकार ना लुपा कोटी लिसिंग कुंठा तरुक कैथोकले नेपाल खंगहौदन थोरप इसिंग सौन सिखिब मीगी मसिंग चहुम हेनख्रे मियोय लिसिंग हेन थीब खंगदन लैरी गरांग खंगहौदन थोरखिब इसाउदन भारत मचा चहुम हेन हौजु फाउब थीब खंगद्री तिबेट तगी हौरखिब इसाउदन नेपाल की खुल थोंग युमकै अमदी मरु ओइब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अमांगता थोकले
0: मखल मचल की थोरों क्या संदुकुन तहन चरी आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल संदुक चरीबा एफ एम मेगा हर्स चाम अहम दशमिक मंगा

0: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯇꯥꯃꯩ ꯔꯣꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯁꯥꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯨꯝꯐꯨꯃꯥꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯁꯛꯂꯥꯝ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯣꯒꯁꯠ 12ꯗ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯖꯤꯛꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯈꯨꯖꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ, ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯨꯅꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯒꯣꯌꯦꯜ, ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡ, ꯗꯤꯖꯤꯄꯤ ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯁꯤꯡ, ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ, ꯔꯥꯏꯖꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ, ꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯄꯤ ꯑꯦꯐ, ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ, ꯑꯥꯔꯃꯤ, ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ, ꯕꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯐ, ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯕꯤꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ 30ꯁꯨꯕ ꯆꯛꯂꯥꯝ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯦꯝ ꯁꯨꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯣꯏ ꯁꯛꯇꯨꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯤꯁꯨꯝ ꯆꯤꯡꯉꯥ ꯃꯁꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯕꯝꯗ ꯂꯩ ꯁꯨ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤ.ꯑꯦꯝ. ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯝ ꯁꯨꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯖꯤꯂꯥꯗꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕꯁꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯁꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯍꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯠꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯁꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 30ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11:00 ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 5:00 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ, ꯂꯩꯐꯝ, ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ, ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ जिला असगी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नथोक पचेरोला मनहाई मसी नेपाल गी अथॉरिटी का पाउ फाउनरगा मियो सिंग अदु टेक त काइदन लेहन बमति मखोइ द पांगबया बमति पांगनबा लखलक पखोंथांगनी नेपाल सखी बमियो सिंग अदु गी अकुप मरोल सिंग पोरम पार्क की एसडीओ गी टेलीफोन नंबर 7005615137 एसडीओ कैराउ पित्र गी टेलीफोन नंबर 9233287917 अमदि एसडीओ सवंबुंग गी टेलीफोन नंबर 8787418347 द पाउ पिरक बयागनी हाइरी पाउ गी मरक थना अतेन ब ब्रेक अमा
1: हेमा थौबा कदाई सलुइनो
2: थबग म चलु बने इतै मबु एसआईआर गी क्लेम फाइल तो बिखरबो
1: ओ तौख्रे मखा कै दोर कनी हाइबदि खंगद्री
2: क्लेम फाइल तो खरबो मतुंगदा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हाइबदि ईआरओ न क्लेम खुदि मक अमत सिदा बलै तना लोखलग येंगनी तैमा
1: ओ अदुरो क्लेम सेंड ऑब्जेक्शन डिस्पोजल पेर हाइसे अदो ईआरओ न कोखलकनी हाइसिबु आइडियाम किजैबो
2: मानी तैमा करि मथु कि निगाइ लैते दे तैमा मखोइना कोखलगलबदि दरकार ता हेब डॉक्युमेंट खुदि मक पुरग सतबि गदबने मोइने इतै मगे क्लेम दो यामन सेरेस होइन लौरि
1: ꯌꯥꯔꯣꯅ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯥꯏ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯈꯥꯏ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों शाम की इस खूबसूरत घड़ी में आपका इस्तकबाल है एक ऐसे सफर में जहां रास्ते पुराने हैं लेकिन एहसास आज भी बिल्कुल नए हैं। दोस्तों कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लगता है कि जैसे किसी ने दिल की कोई पुरानी चिट्ठी खोल दी हो, कोई भूला हुआ चेहरा हमारे सामने आ जाता है और किसी की मुस्कान हमें याद आ जाती है और कभी कभी हमें वो याद वादा याद आ जाता है जो बरसों पहले हमने किसी से बड़ी मासूमियत से कह किया था और इसको याद करके हमारे हमें धीरे से मुस्कुरा देते हैं। तो आइए आज पुराने गीतों की महफिल सजाते हैं, दिल को थोड़ा पुराना होने देते हैं और यादों को थोड़ा सा जवान।

दोस्तों क्या खूब कहा है किसी ने कि प्यार में सबसे खूबसूरत चीज अगर कुछ है तो वो है भरोसा। और भरोसे के साथ आता है एक छोटा सा वादा, वादा ये कि चाहे मौसम बदल जाए, मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा कम हो जाए, रास्ते भले ही अलग हो जाए, दिल में किसी की जगह कम नहीं होने देंगे। पुराने जमाने के गीतों में ये वादे कितने सीधे और कितने खूबसूरत हुआ करते थे। ना कोई बड़ी बड़ी बातें, ना बहुत लंबी शिकायतें, बस एक नजर, एक मुस्कान और फिर दिल कह देता था अगर तुम साथ हो तो सब ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

दोस्तों, कभी कभी कोई गीत सिर्फ गीत नहीं होता, वो किसी इंसान की आवाज बन जाता है, किसी शहर की याद बन जाता है, किसी गली की याद बन जाता है, किसी बरसात की शाम, किसी खत की खुशबू, या फिर किसी मुलाकात का बहाना बन जाता है। और फिर बरसों बाद जब कभी वो गीत कहीं रेडियो पर सुनाई दे जाता है तो लगता है जैसे वक्त ने, समय ने अचानक पीछे मुड़कर आवाज दी हो और कहा हो, याद है? फिर दिल कहता है, हाँ सब याद है। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसी ही याद को इस खूबसूरत से गीत में महसूस करते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

वादा सिर्फ एक शब्द है लेकिन मोहब्बत में इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, ये कितना छोटा सा वाक्य है लेकिन जब ये बात किसी अपने के मुंह से निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया की सुरक्षा मिल गई हो। जिंदगी हमेशा वादों के मुताबिक नहीं चलती, कभी रास्ते बदल जाते हैं तो कभी हालात मजबूर कर देते हैं। लेकिन सच्ची मोहब्बत की खूबसूरती शायद यही है कि वादा निभाया जाए या ना निभाया जाए, लेकिन उसकी नियत दिल में हमेशा जिंदा रहती है।

दोस्तों, मैं बाप से इजाजत लेने का वक्त है। खुश रहिए, अपनों के करीब रहिए और प्यार को जिंदगी में थोड़ा सा बचा कर जरूर रखिए, क्योंकि जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, एक गीत सुनने का वक्त जरूर निकालिए, किसी अपने को याद करने का वक्त निकालिए और कभी कभी बिना किसी वजह के मुस्कुराने का भी वक्त निकालिए।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है पहला जहाज यहां से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था जिसमें कि कंबल सोलर लैंप दवाइयां हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहां से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851318007 और +9779816217 नंबर जारी किए हैं इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर

तशकंद की दो दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओ, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। Defense Minister Rajnath Singh says defense production nearly quadruples to around 1.8 lakh crore rupees in 10 years and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे बंद हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन चार गुना होकर 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक लगातार दूसरे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 539 अंक यानी 0.70% गिरकर 76,934 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 117 अंक यानी 0.48% लुढ़क कर 24,091 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी 0.1% की सुस्ती देखी गई। इससे पहले आज कारोबार की शुरुआत में बाजार में तेजी दिखी, जिसके मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी और ईरान तथा ओमान के बीच कूटनीतिक बातचीत रहे। हालांकि जल्द ही दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गवाई और नीचे आकर कारोबार करने लगे। सेंसेक्स के मंथली फ्यूचर्स और ऑप्शंस की एक्सपायरी के कारण बिकवाली का दबाव बना रहा, जिससे ज्यादातर समय दोनों सूचकांक एक सीमित दायरे में ही रहे। बाद में क्लोजिंग ऑप्शन सेशन के दौरान गिरावट आई।
0: Benchmark domestic equity indices ended on a negative note for the second consecutive session today. Sensex declined by 539 points, 0.70% to close at 76,934. Nifty lost 117 points, 0.48% to settle at 24,091. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index and the small-cap 100 index dipped 0.1% each. Earlier, the markets opened on a positive note, supported by easing crude oil prices and hopes of a diplomatic breakthrough between Iran and Oman. However, both the stock market indices soon gave up the early gains and slipped into negative territory. The indices remained largely range-bound through most of the session as selling pressure persisted due to Sensex monthly futures and options expiry. In the subsequent closing auction session, the indices extended their losses.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों को आज नुकसान हुआ।

0: सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में HDFC बैंक 2.1%, NBFC में 2% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.8% नीचे आ गए। इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में आज 1.7%, ICICI बैंक 0.9% और टेक महिंद्रा में 0.8% की तेजी दर्ज हुई।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 28 sectors edged downward. Among the top laggards, a mid-small private bank shed 2.6%, PSU banks lost 2.1%, and BankEx dropped 1.7%. In contrast, capital goods gained 0.6%. Telecommunications added 0.5% and healthcare rose by 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,557 companies declined, 1,779 companies advanced, and 190 companies remain unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के तुलना में 14 पैसे गिरकर 95.55 रुपए पर बंद हुआ। पुनीत, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: पुनीत, मार्केट आज सुबह एक अच्छी शुरुआत के साथ था, कारोबार कर रहा था, लेकिन बाद में वो अच्छी शुरुआत सस्टेन नहीं कर पाया। क्या कारण रहे ऐसे, और क्या लगता है कि करेक्शन आसपास या करेक्शन हो चुका है?
2: निखिल, देखिए, जहां तक करेक्शन का सवाल है, बाजारों में अभी एक इनहेरेंट एक सुस्ती कहूंगा, वीकनेस तो मैं शब्द शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बाजार सुस्त हैं। और खास कारण यह है उस बाजारों का सुस्ती का कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जैसे आज आपने पढ़ा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स थे, HDFC बैंक या जो बड़े बड़े बैंक के शेयर्स थे, वहां हमने थोड़ी गिरावट देखी। और यहां पर काफी बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टेड हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड हैं, और उनको रिटर्न्स नहीं आ रहे। और ये माहौल पिछले करीब एक या दो वर्ष से हम देख रहे हैं कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं, वहां पर निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं आ रहा है। उस कॉन्ट्रास्ट ये है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, वहां पर कुछ मुनाफा आ रहा है, कुछ सिलेक्टिव हम तेजी मंदी देख रहे हैं वहां पर, और ज्यादातर पैसा भी अब मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि बाजार मिले जुले हैं विद एन अंडरलाइंग स्लो मार्केट मूवमेंट। आज के बाजार खास तौर से मैं का जो आपने देखा उतार चढ़ाव के शुरुआती दौर में बाजार तेज थे, फिर बाद में गिरावट आई, उसका कारण जो आपने कहा कि आज जो एक मंथली एक्सपायरी थी इन सेंसेक्स की, वो उसका कुछ इफेक्ट रहा। लास्ट क्लोजिंग सेशन में, लास्ट के 15 मिनट में ज्यादा हमने गिरावट देखी, तो वो कोई खास बात नहीं है। पर ओवरऑल मैं कहूंगा कि मार्केट जो है वो अभी थोड़ी सुस्त है।
1: पुनीत, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द डेरिवेटिव सेगमेंट, बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी contracts which are bought into for the next month. We have the FNO expiry for this month. What happens in the next month in the derivative segment, which is having an impact on the cash market right now? When we talk about mid cap, small cap, Sensex, Nifty, these all cash segments. So any selling pressure here means that there is something in the derivative contracts for the next month which is really motivating the selling pressure now.
2: So Arjun, you have raised a very pertinent question, because see, initially when the whole idea of derivatives was mooted, the idea was that there's a large cash market and we have this derivative market which is to be used by investors for hedging their risk. So idea was that the cash market should be large, and derivative market, as the name suggests, it is derived from the cash market, and therefore it should only be a small portion or part of the market. What has happened is that because of the speculative nature of derivatives, and the fact that people can take leverage positions, they can make quick gains, and they hope to make quick gains, we've seen that over the years, derivatives have actually become several times larger than the cash market. So the underlying market is much smaller, and the derivatives market is today almost 80 to 90% of the market volume, total market volume, which is not good. So what has happened is that derivatives have started driving valuations in the cash market. And again, that is what we saw today. Towards the end of the session, when the closing auction happened, when the prices for options were to be determined, we saw that the index fell very sharply. Particularly the BankEx, the banking index listed on the BSE, it fell very sharply. About almost 1,000 points it fell in last 10 minutes. So this derivative market is distorting the cash market. I think regulators really need to look at it seriously. But you are right. Right now, derivatives market is practically driving the volume as well as the prices in the cash market.
1: So we have some news coming in that small cap 100 index is near to an all-time high, even though we are seeing very marginal correction in this particular index along with mid cap as well. What's relevant is the price to earnings ratio. It is above 30. Is that a healthy price to earnings valuation as compared to mid cap

0: घरेलू उत्पाद विकास दर का अनुमान पहले के 2.6% से बढ़ाकर 3.3% कर दिया है, जबकि सीपीआई महंगाई का अनुमान 2.7% पर ही बनाए रखा है। पूरी तेज दक्षिण कोरिया में जिस तरह की हम ये बदलाव देख रहे हैं, जो ब्याज दर में जिस तरह से इन्होंने चेंजेस किया है, इसके क्या मायने हैं ऐसी स्थिति में, हालांकि अभी लग रहा है कि साउथ कोरिया का मार्केट थोड़ा सा संभला हुआ है।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए साउथ कोरिया का मार्केट तो बिल्कुल एक आउटलायर मार्केट रहा है स्टॉक मार्केट्स में पिछले 2 वर्षों में, इसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। ऑन एनी गिवन डे हम देखते हैं 5% बढ़ जाता है, कभी 5%, बहुत वोलेटाइल स्टॉक इंडेक्स है, पर फिर भी वो एक सिस्टम को या एक एक, एक, एक दिशा बता रहा है कि इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी कहां जा रही है। साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, हमने देखा कि ये जो इकॉनमीज थी यहां पर AI driven जो मैन्युफैक्चरिंग थी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, वो ज्यादातर लिस्टेड है वहां पर, और वहां पर काफी ज्यादा वहां पर निवेश भी आया, इन्वेस्टमेंट भी आई और बहुत बड़े पैमाने पर आई, और इसी वजह से हमने उतार चढ़ाव देखा। साउथ कोरिया को देखें तो मैं ये कहूंगा कि आज जो उन्होंने ब्याज दर बढ़ाए हैं, हालांकि उन्होंने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन स्टेबल रखा है
0: जी।
1: और अपना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा एस्टिमेट उन्होंने बढ़ाया है, पर मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए एक संकेत है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन को लेकर प्रेशर बना रहेगा इकोनॉमीज के ऊपर, और सेंट्रल बैंक्स को आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हालांकि नोबडी सेज दैट, अमेरिका में भी आप देखेंगे कि वो ये बात कहने को तैयार नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, पर मुझे लगता है अगले वर्ष तो प्रोबेबिलिटी की इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे वो ज्यादा है कंपेयर टू की इंटरेस्ट रेट कट होगा।
0: तो ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव टेरिटरी में पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश की है।
1: नहीं नहीं, ऐसा देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो एक तरह से हम कहते हैं कि जब अच्छी ग्रोथ होती है तब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, या इन्फ्लेशन होता है यानी डिमांड ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, पर स्टॉक मार्केट के लिए वो वैल्यूएशन के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो हमें लगता है कि स्टेबल इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
2: In more news, Defence Minister Rajnath Singh has said the country is moving towards self-reliance in the defence sector. The defence production has nearly quadrupled to around 1.8 lakh crore rupees and exports have surged to nearly 39,000 crore rupees over the last decade. Mr. Singh said the government has set a target of achieving defence exports worth 50,000 crore rupees by 2028-29 fiscal. He said India was not only manufacturing weapons domestically but was also developing the capability to maintain, overhaul and upgrade them. Your comment on defense security vis-a-vis the economy, because you're looking at manufacturing and employment.
1: So interestingly, India of course until a few years back was importing most of its defense requirements, so there were strategic issues with that, the dependence on other countries, reliability of and the technical advancement that you could make. Also, when you were importing all this defense equipment, then it only meant that we did not develop domestic manufacturing sector. So what has happened in the last 10 years, I think it's really remarkable the way India has emerged as a manufacturer of defense equipment domestically for our own armed forces as well as an export sector. And I know many companies personally, small manufacturing companies, which have really come up and done very well in defense sector. So it is good for India's security, strategic security, and it is also good for India's manufacturing sector because that ecosystem is now developing very well, very fast. And I think it's a remarkable, if you really look back on, I look back on the 10-15 years of India's growth in last decade, then I think defense sector manufacturing would be the one of the biggest stories, success stories of Indian economy.
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये भारत के वित्तीय परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ खाते खोले गए, इनसे लगभग 3,17,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी समावेशी पहल है जो सभी भारतीयों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। मंत्रालय की जानकारी के अनुसार प्रति खाता 5,356 रुपए जमा हुए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 78% खाते अर्धशहरी या ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं, जिनमें से लगभग 56% भागीदारी महिलाओं की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लाखों लोगों का सशक्तिकरण किया है। श्री चौधरी ने कहा कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं ने लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक बदलाव किया है। पुनीत, जब इस योजना का शुभारंभ हुआ था, एक ऐसी सोच रखी गई थी कि हर एक भारतीय के पास उसका बैंक खाता हो, चाहे वो किसी भी तबके का खाता हो। आज जब हम ये देखते हैं कि 3,17,000 करोड़ रुपए जमा हुए, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
1: देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि प्रैक्टिकली हर भारतीय के पास आज एक बैंक अकाउंट है। उसका कई आपको सीधा बेनिफिट

0: दो बेनिफिट आपको बिल्कुल जो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की यूपीआई की आज ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बिकॉज ऑफ जनधन योजना की वजह से, क्योंकि गांव गांव में घर घर में आज सबके पास मोबाइल फोन है और इंटीग्रेटेड है आपके बैंक अकाउंट से। दूसरा मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस जनधन पूरी स्कीम की रही है कि जो हम गांव गांव में हर जगह ये हम डिजिटल इकोनॉमी आई है वो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आज हम बात करते हैं कि कोई आप लीकेज नहीं होगी सिस्टम में और आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूपीआई ये जनधन योजना का ही एक स्वरूप है जो उसकी डेवलपमेंट से आया है और मुझे लगता है इसने ट्रांसफॉर्म किया है भारत की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को।
1: ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू व्हाट्स हैपनिंग इन वेस्ट एशिया।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर से शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है और ईरान आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी आज ईरान पहुंच रहे हैं। वे ईरानी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। पुनीत जी, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगता नहीं कि कोई जल्दी हमें एक ठोस निर्णय तक पहुंचने का मौका मिलेगा।
0: देखिए, जो ईरान और यूएस की जो वॉर है वो एक अलग ही रूप अब ले चुकी है, वो इकोनॉमिक वॉर में ट्रांसफॉर्म हो गई है। फिजिकल वॉर में बॉम्ब्स गिरना और हवाई जहाज की लड़ाई वो नहीं है, अब एक इकोनॉमिक फॉर्म एक लेती है और इकोनॉमिक वॉर जो है वो थोड़ा लंबा चलती है और स्ट्रेटेजिक वॉर होती है, तो मुझे लगता है वो नया रूप एक ले रही है ये वॉर अब।
1: In more news, global crude oil prices rose moderately today. Brent crude was trading 0.7% up at $88.50 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.4% up at $82.50 per barrel when reports last came in. We were talking about what's happening in West Asia between, you know, in the... Gulf area where, you know, the shipping takes place and, you know, oil prices are escalating as a result of what Iran is doing and what the US is doing. But Ukraine and the Russia conflict earlier had spiked the prices of Urals oil. Now that's moderated. Is that a sign of oil prices actually coming down or going up?
0: So it is basically a sign of better supply of oil in the world, because earlier most of the oil was going either through Gulf or through the Suez Canal route. Now we have this Arctic route also opening up, and therefore the Urals prices have come down. Primarily, I would say this is a stabilization of the oil market. Oil market, I think, is moving beyond the US-Iran conflict now. That they are of course settling at a higher price, but I think the oil market is stabilizing to a large extent.
2: पुनीत, आपको लगता है कि ईरान और ओमान के बीच में जो कूटनीतिक बातचीत हुई है, इसका कोई असर पड़ेगा ऑयल मार्केट पर?
0: देखिए, दोनों देश ही अपनी रेवेन्यूज को जो ऑयल के और गैस के, ओमान है, कतर है, ये बेसिकली गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल सप्लाईज तो आ रही है, लेकिन गैस की जो सप्लाईज है वो अफेक्टेड है, तो वो दोनों देश अपनी अपनी इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो ये, जैसे मैंने कहा कि ये वॉर जो है अब पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है, उसका रूप बदल रहा है, उसके स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स बदल रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू सिक्योर देयर ओन इंटरेस्ट।
2: जी, आगे बढ़ते हैं। सराफा बाजार में सोना 1.9% नीचे आकर 158,386 रुपए प्रति दशकान पर था और चांदी 1.9% लुढ़क कर 239,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। अब पुनीत जी, एक निवेशक के नजरिए से अगर इन दोनों चीजों को देखें तो आपको क्या लगता है, कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, क्या संभावनाएं नजर आती हैं?
0: देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है चांदी और सिल्वर में काफी जंप आया है, और यदि यूएस डॉलर, जैसे ऐसा लगता है हमें कि डॉलर में थोड़ी गिरावट आएगी आने वाले समय में, तो सोना चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली यूएस डॉलर की कमजोरी का कारण के वजह से हम देख रहे हैं तेजी बन रही है, और जो फैक्टर्स हैं भी यूएस डॉलर वीकनेस के, वो थोड़े फैक्टर है। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, अगर चांसेस कम है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तब गोल्ड और चांदी में आप गिरावट देखेंगे। तो यूएस इंटरेस्ट रेट्स पे नजर रखिए, वहां से हमको संकेत मिलेगा कि ट्रेंड क्या होगा।
1: ऑल्सो सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग इनटू गोल्ड वंस अगेन, व्हाई इज दिस ट्रेंड पिकिंग अप नाउ? बिकॉज सिल्वर वेंट अप एंड देयर वाज लॉट ऑफ बाइंग बाय इंडियन फार्मर्स बिकॉज ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट इनकम बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स दिस इन्वेस्टमेंट। What is the central banks doing now?
0: So central banks, as like I said, if the dollar index suffers, then immediately we say buying in precious metals. So that is what is happening, the hedging against a dollar depreciation.
2: पुनीत जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद निखिल

0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 500 points. Nifty settles below 24,100. Defence Minister Rajnath Singh says defence production nearly quadruples to around 1.8 lakh crore rupees in 10 years. Then global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now,
1: Namaskar.
0: Goodbye.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 2400 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111238871818 और +9111238871819 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813261117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा में समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डोमियन फर्नांडो शनिवार तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करना तथा भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को बढ़ाना है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और

रात के आंगन में चांद आज कुछ ज्यादा निखरा है, जैसे संगीत सुनने को वह भी हमारे साथ ठहरा है। हवा की लहरों पर कोई मीठी तरंग चली है और दूर कहीं से गीत की खुशबू से मिली है। इस पहर ना कोई जल्दी है, ना किसी मंजिल की तलाश, बस सुरों का साथ है और दिल के लिए कुछ खास। तो आइए एक एक गीत के साथ रात को नया रंग देते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा के साथ मैं हूं जयती। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में पहला गीत फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए और आवाज है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। बरसात की रातों का अपना एक सुंदर सा संगीत होता है। बूंदे छत पर गिरती हैं और भीतर कोई पुरानी बात जाग जाती है। सड़कें भींगी हो तो शहर कुछ देर के लिए अपना चेहरा बदल देता है। स्ट्रीट लाइट के नीचे चमकती हर बूंद किसी अधूरी कविता की जैसी लगने लगती है। ऐसी रात में चाय की खुशबू भी थोड़ी सी ज्यादा अपनी लगने लगती है और रेडियो रेडियो जैसे किसी अनजान कमरे में बैठा अपना कोई इंसान हो। आप जहां भी हैं, अगर आपके पास आसपास ऐसा ही कुछ हो रहा है तो कुछ देर ठहरिए, बैठिए। बारिश हो रही हो तो बारिश का मजा लीजिए, क्योंकि बारिश अपने साथ यादों का मौसम भी लेकर आती है और कभी कभी ये मौसम हमें उन बातों तक ले जाती है जिनसे हम दिन भर बचते रहते हैं। ये बारिश जो है ये हमें उन बातों को याद करने का मौका देती है और मौसम बहुत सारी कहानियों को दोहराने का वक्त देता है। तो आज हम ऐसी ही कुछ और भी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और गीत और फिर आगे बढ़ेंगे। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म का नाम है कभी कभी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना।

ये जो दिन के बाद रात आती है ना, तो रात को लेकर यूं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, पर रात दिन की थकती हुई कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि ये जो रात है ये हमें हमसे मिलने का सबसे सुंदर समय देती है। जब शहर की आवाजें कम होती हैं, तब भीतर की आवाज कुछ साफ सुनाई देने लगती है। किसी को नींद की तलाश है, किसी को किसी अपने की याद की, किसी के पास बहुत कुछ कहने को है मगर सुनने वाला कोई नहीं है, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी दिल बिल्कुल खाली है। और ये जो रेडियो है ना, रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये अनजान लोगों के बीच भी एक संबंध बना देता है। तो इस रात हम आपसे यही कहेंगे कि अपने लिए कुछ पल अपने पास रखिए और कल की चिंता कल पर छोड़िए। आज की रात बस खुद के साथ बैठकर

खुद के साथ जीने की कोशिश करिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत जो है वो फिल्म का नाम है कुदरत, आवाज है लता मंगेशकर की।

ये जो दिल है ना, इसमें इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर आप दिल की बातों को शब्दों में बांधने की कोशिश करेंगे तो आप इसे शब्दों में नहीं बांध सकते, क्योंकि एहसास को शब्दों में बांधना ये बहुत मुश्किल काम है। जो दिल की बातें होती हैं उनको शब्दों में बांधना हो तो वे उतरती हैं किसी गीत की धुन में, किसी खुशबू में लौटती हैं, या अचानक किसी पुराने नाम के साथ कविता बनकर लौट आती हैं। ये जो जज्बात होते हैं ना, ये थोड़े अजीब से होते हैं। इसे जितना हम छुपाने की, बचाने की कोशिश करते हैं, ये मन के अंदर उतने ही गहरे होते जाते हैं। और रात जब आती है तो ये जज्बात जो हैं ये फिर से जाग उठते हैं, क्योंकि रात उन्हें आवाज देती है। इसलिए शायद देर रात सुने गए गीत, पढ़े गई कोई किताब, कोई शब्द सीधे दिल पर दस्तक देते हैं। दिन हमें व्यस्त रखता है।

और रात हमारी संवेदनाओं को जगा कर रखती है। और आज अगर आपका दिल भी आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसे रोकिए मत, उसे बांधने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हर भाव का, हर एहसास का, हर जज्बात का एक अर्थ होता है। बस उसे समझने के लिए इस रात में थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठिए और दिल पर जो आवाज दस्तक दे रही है उस दस्तक को सुनने और समझने की कोशिश करिए। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सिलसिला।

वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि एक बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं जिस गीत के साथ। आवाज है आशा भोसले की और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है कश्मीर की गली। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी

0: नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जलविद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 2400 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230887818 और +9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779810361717 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की निर्यातित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में पहला गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। रात के आंचल में आज सुरों की महक घुली है, दूर किसी मंदिर की घंटी जैसे हवा मिली है। चांदनी आंगन में चांदी के फूल खिला रही है और हर मधुर धुन कोई नई तस्वीर बना रही है। ये पहर उन सुनने वालों के नाम जो अभी जाग रहे हैं, जो अपने पसंदीदा गीतों के संग कुछ पल खुद से मांग रहे हैं, तो अपनी धड़कनों को संगीत की लय पर धड़कने दीजिए और आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है प्रेम कहानी, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाज कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

मेरी फुहार ने जब देहरी को छुआ, मैंने पायल उतार कर आंगन में रख दी कि आज मेरे कदमों की आहट नहीं, बूंदों का संगीत सुना जाए। अमलतास के पास भीगी हुई धूप पर एक पीला फूल गिरा था। मैंने उसे उठाकर अपनी चोटी में सजा लिया। ऋतु ने जैसे बिना कहे मेरा श्रृंगार कर दिया। ताल के किनारे कमल की पंखुड़ियां खुली। कच्ची मिट्टी ने सोंधे महक से भरकर मेरी सांसों को छुआ और भीतर कोई पुराना राग अचानक जाग उठा। ना कोई संदेश आया, ना किसी पथ पर पदचाप सुनाई दी। फिर भी आज मन ने किसी के अभाव को अपनी नियति नहीं माना। मैंने काजल लगाया, हरी चूड़ियां पहनी, माथे पर छोटी सी बिंदी रखी और आईने से कहा, स्त्री का श्रृंगार किसी की प्रतीक्षा नहीं, उसकी अपनी प्रसन्नता भी हो सकती है। घन घिरते रहे पर्वतों के पार, नदियां अपने तटों से बातें करती रहीं। कहीं मोर ने पंख खोले, कहीं बेलों ने पुराने वृक्षों को आलिंगन दिया। मैंने देखा, प्रकृति किसी के लिए अपने रंग नहीं बचाती, जिसे जहां खिलना होता है वहीं खिलती है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है रोटी।

और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है गाइड और आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती।

वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां और आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने।

0: सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सेबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कमकुई अशांग इलाके के IT रोड पर कल सुबह करीब 9 बजे गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सेनापति जिले में लोगों ने बंद का ऐलान किया। इस घटना के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शाम को राजधानी इम्फाल में मुख्यमंत्री सचिवालय में सुरक्षा से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हमले की समीक्षा की गई और सुरक्षा अधिकारियों को दोषियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मणिपुर में ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन AMSU ने इम्फाल में 61वां हंगर मार्चर्स डे या चकलाम खोंगपत मनाया। ये दिन उन 4 छात्र नेताओं की याद मनाया जाता है जिनकी मौत 27 अगस्त 1965 को मणिपुर में चावल की कथित कृत्रिम कमी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हो गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित चांदी या चांदी के आभूषण तंत्र का विस्तार किया है। अब देश के 102 जिलों में 341 चांदी परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं। त्योहारियों के मौसम से पहले 25,000 से ज्यादा चांदी के ज्वेलर्स BIS के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Frishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency supplies aimed

की बांसुरी में ऐसा क्या है जो हर बार मुझे मेरी ही खामोशी सुनाती है। वो मुस्कुराया, शायद उसमें स्वर नहीं तुम्हारा नाम बसता है, शायद उसमें स्वर नहीं तुम्हारा नाम बसता है। और अगर मैं तुमसे रूठ जाऊं, तो उसने कहा, तो बांसुरी मौन रहेगी, क्योंकि प्रेम में स्वर भी उसी के होते हैं जिससे हृदय जुड़ा होता है। वो धीरे से बोली, फिर मुझे कभी मत पुकारना। वो मुस्कुराया, पुकारूंगा नहीं, तुम्हें अपने भीतर रखूंगा, जहां से कोई विरह भी तुम्हें मुझसे छीन न सके, जहां से कोई विरह भी तुम्हें मुझसे छीन न सके। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में पहला गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

अकेले होना और अकेलापन, ये दोनों ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं, पर ये दोनों एक बात नहीं है। कभी कभी अकेली रात इंसान को अपने सबसे करीब लेकर आती है। कोई साथ ना हो, फिर भी मन में बहुत से चेहरे रहते हैं। कितनी आवाजें, कितनी बातें और कितनी अधूरी मुलाकातें। हम अक्सर भीड़ में खुद को खो देते हैं और रात हमें फिर अपने पास बुलाती है। और अगर आज आप अकेले हैं तो इसे अपनी कमी मत समझिए। शायद ये वक्त होता है जब हम खुद से बातें कर सकते हैं, खुद को सुन सकते हैं और अपने दिल से सवाल भी कर सकते हैं कि सचमुच हमारा दिल हमसे क्या चाहता है। कभी कभी सबसे जरूरी जवाब जो होता है ना, वो दुनिया हमें नहीं देती है, हमें हमारा अपना मन देता है। जब हम उस मन के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और उसकी आवाज को पूरी तन्मयता से सुनते हैं। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है रेशमा और शेरा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बॉबी।

रात के आंचल में आज सुरों की महक घुली है, दूर किसी मंदिर की घंटी जैसे हवा से मिली है। चांदनी आंगन में चांदी के फूल खिला रही है और हर मधुर धुन कोई नई तस्वीर बना रही है। ये पहर है उन सभी लोगों के नाम जो अभी जाग रहे हैं, जो अपने पसंदीदा गीतों के संग कुछ पल मांग रहे हैं, तो अपनी धड़कनों को संगीत के लय पर छोड़ दीजिए। आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है अंदाज, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसे ही किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहेगी अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। पर याद दिला दें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है शागिर्द, आवाज है लता मंगेशकर की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। अचानक आई इस बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से

0: देशों मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया है कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की दो दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित चांदी या चांदी के आभूषण तंत्र का विस्तार किया है। अब देश के 102 जिलों में 341 चांदी परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं। BIS ने बताया कि 6 अंकों वाला हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान चांदी के आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करता है। मानक ब्यूरो ने चांदी आभूषण ग्राहकों को सलाह दी है कि वे BIS हॉलमार्क देखें और BIS केयर ऐप के जरिए HUID को जांचें। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद से ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli One project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. On the international standard on the Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 2308 8718. +91 11 2308 8719. For WhatsApp calls and messages, +91 9968291988 can be contacted.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज की रात इस पहर मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ हमराही के इस सफर को लेकर और हमराही के सफर के खास बात है कि हम इसमें आपको सुनवाते हैं हिट फिल्मी ड्यूएट्स तो चलिए उन सुनहरे गीतों में खो जाने के लिए जिन्हें गाया कुछ युगल स्वरों ने जिन्हें जो है चरित्र दिया कुछ युगल अदाकारों ने और कहें तो तुम मिले हम बने और ये सफर तय हुआ

फिल्म तेरे घर के सामने से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में एस डी बर्मन साहब का सुरीला संगीत। संसार कहता है प्रेम पागल कर देता है, किंतु तुम्हारे प्रेम ने मुझे समझदार कर दिया। अब मैं तुम्हें खोजने नहीं निकलता किसी गली किसी पते किसी शहर में, क्योंकि समझ गया हूं जिसे दिल में बसाया हो उसे रास्तों पर ढूंढना व्यर्थ है।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म नया दौर से। किनारा किनारे पे बेसुध पड़ा था, समंदर का जी भी भरा लग रहा था। हमें इश्क बस इस सबब से हुआ था, हमारे भी हिस्से में थोड़ा खुदा था। मैं एक चांद बनकर छिपा उसके पीछे, वो सबके लिए फिर रुपहले घटा था। और जब वो दिल लेके परदेसी हो गया तो सच में बड़ा दुख हुआ था। तो सच ही कहा है किसी ने, परदेसियों से नाखियां लड़ाना। लेकिन हम जो यहाँ ये गीत सुन रहे हैं, ये फागुन फिल्म का गीत है आप सभी के लिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है हमराही का जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पुराने हिंदी डुएट सॉन्ग्स जिन्हें आप बेहद पसंद करते हैं।

आशा और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे आप, फिल्म काली टोपी लाल रुमाल से, और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म मैं चुप रहूँगी से, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है हमराही का। हमराही तो वही होता है जो आपके सफर को साझा कर ले, और हम भी कोशिश करते हैं कि रात का ये जो कठिन सफर है इसे हम आपसे साझा कर

और इसी बीच हमराही में हम सुनवाते हैं आपको युगल गीत। तो चलिए अगला युगल गीत जो है वो हम लेकर आ रहे हैं फिल्म सारंगा से, लता जी और रफी साहब की आवाज़ में।

मिस मैरी फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप लता और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में हेमंत कुमार का संगीत और बोल लिखे राजेंद्र कृष्ण ने अगला गीत सुनवाएं उससे पहले कुछ कह भी लेते हैं लगा कि कल ही की बात है और बीच में बस ये रात है तुमने सुनहरा दुपट्टा ओढ़ा था हाथों में चूड़ियां आंखों में कागज काजल लगाया था होठ हिले थे कुछ कहा था तुमने वो सरसराहट कानों में अभी जिंदा है वही पल था और ये दिल दीवाना हुआ आपका अगला गीत फिल्म इश्क पर जोर नहीं से आप सभी के लिए

और अब समय हो गया है कि हमरा ही कार्यक्रम से इजाजत ले ली जाए, तो इजाजत दीजिए माधुरी को, कुछ ही समय प्रसारित होंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जलविद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमरीका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया है कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। श्रीलंका ने कहा है कि वह नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरु कुमार दिसानायके ने कहा कि जरूरत की इस घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल

0: स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद से ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. The death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli One project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines on the internationals stranded on the Chinese side. Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 2308 8718, +91 11 2308 8719. For WhatsApp calls and messages, +91 9968 291988 can be contacted. The emergency contact numbers of the Indian Embassy in Kathmandu are +97 7985 131 6807, +97 7970 910 7500, and +97 7981 032 6117. The flash floods were caused after an avalanche blocked the flow of landed tributary of the Bhotkoshi and first hit Temure near Nepal's border with China at Rasuvgadi. The National Disaster Response Force, NDRF, has said that the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored in coordination with the two state governments, NDRF

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप अरुणिमा का ये सफर लेकर मैं माधुरी हूँ आज आप सभी के साथ शुरू करते हैं इस सफर को और ये भी एक बात है कि हर सफर शुरू होता है और यही कोशिश होती है कि हर सफर का आगाज अच्छा हो इसका अंजाम अच्छा हो हमारा आपका जीवन बहुत ही जटिल है पर जटिलता ही जो है इसकी सुंदरता भी है लेकिन ये बात जरा देर से समझ में आती है लेकिन आते आते आ ही जाती है

जिंदगी में जो चीज़ हम सोचते हैं ना करें, न जाने क्यों वही चीज़ बार बार होती चली जाती है। जैसे उदासियों को ही लें, अगर हम चाहें कि हमें उदास नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन फिर भी उदासियाँ कहीं ना कहीं से आती हैं, हमें घेर लेती हैं, घेरती हमें परेशानियाँ हैं और परेशानियाँ हमें उदास कर जाती हैं। और ज़िंदगी क्या है? इन उदासियों से लड़ने का नाम है, मुस्कुराने का नाम है, परेशानियों पर विजय पाने का नाम है।

कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लगता है कि जिंदगी बाधाओं के आगे विवश होकर रह गई है, दुख आया और जाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे पलों में, ऐसे क्षणों में लगता है कि अब जो होगा गलत ही होगा, पर हार के आगे जीत की सीढ़ियां शुरू होती हैं। हमें बस उन सीढ़ियों को देखना है, ढूंढना है और उन पे फिर चढ़ना है। सकारात्मकता आती जाएगी, थोड़ा समय लगता है एक पल को दूसरे पल में बदलते हुए, लेकिन ये समय कट जाता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है अरुणिमा का, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ।

आप सुन रहे हैं अरुणिमा। हमारे संकल्प और विकल्प लगातार बातें करते रहते हैं। छोटे बड़े कामों को पूरा करने के लिए हम हर समय कुछ ना कुछ चुन रहे होते हैं, पर जैसे ही कुछ चुनते हैं उसके बाद उसी पर अड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। जो बातें यात्रा में पड़ाव भर होती है हम उसे मंजिल मान लेते हैं। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं बस वही अंतिम है, उससे आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये सफ़र लंबा है और इस सफ़र में हर चीज़ अंतिम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी जाएंगी और इसी तरह हमें जो भी घट रहा है उसके साथ खुशी खुशी आगे बढ़ते जाना है।

रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी ही बातें हो जाती हैं और मन दुखी भी हो जाता है, पर कई बार हमें अपने मन की बात दूसरे को सिर्फ बताने भर से आराम मिल जाता है। कभी-कभी दूसरों की सलाह भी राहत लेकर आती है, लेकिन ऐसे किसी स्थिति में बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पहले पूरी छानबीन करें कि ये हमारी बात किसी और को कहेगा कि नहीं कहेगा। कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है ना जिस पे हम पूरा विश्वास करते हैं और बस उससे बात करने भर से हमारा मन हल्का हो जाता है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो अपने मन को हल्का कर लिया कीजिए।

भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जीवन में सही फैसलों की बड़ी भूमिका होती है। अच्छे फैसले हमें दूसरों की नजर में ऊंचा उठा देते हैं। अपनी बात सही साबित होने पर हमें खुशी भी बहुत मिलती है, हमारा आत्मविश्वास भी ज्यादा हो जाता है, हम आत्मविश्वास से भर उठते हैं। पर हमेशा हमारे फैसले सही ही होंगे ऐसा तो नहीं होता ना। हम जितना अड़ते हैं उतना पीछे हटने में दिक्कत महसूस होती है, उतना ही उनके गलत होने पर हम दुखी हो उठते हैं। फिर जो बात समझनी है वो ये कि हर फैसला जीवन मरण, हार जीत या इन सब का प्रश्न नहीं होता। इन सबको कभी भी हमेशा आखिरी फैसला नहीं बनाना चाहिए। समय के साथ थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर करना चाहिए। कभी कभी हम सच में जीते जीते हार जाते हैं, तो स्वीकार कर लीजिए ना उसे।

0: अब यहाँ तक तो आ गए हैं, यहाँ के आगे का सफ़र जो है अरुणिमा का कल शुरू होगा। आज का यहाँ का सफ़र यहीं तक, इजाज़त दीजिए और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के नागरिक शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इस बीच श्रीलंका ने कहा है कि वो नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि आवश्यकता की इस घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। और आज अब ये जो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं हम भोर सुहानी, इसमें सबसे पहले आप सभी को बधाई। आज क्योंकि खास दिन है और खास दिन है भाई बहन के प्यार का, जी हाँ रक्षाबंधन का। ये राखी आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां और सफलताएं लेकर आए। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: लो ना।
1: ओ, इटक दाना, बीटक दाना, दाने ऊपर दाना, इटक दाना।
2: पेड़ ने कभी नहीं कहा मैं सबसे ऊंचा हूँ, जड़ ने कभी नहीं कहा कि मैं बेहद गहराई से आई हूँ। शक्ति होती है मौन। पेड़ कहते हैं मुझसे, गहराई भी कहती हैं जड़ें, और पवित्रता भी कहता है अन्न। पेड़ ने कभी नहीं कहा मैं सबसे ऊंचा हूँ, जड़ ने कभी नहीं कहा मैं बेहद गहराई से आई हूँ, और रोटी कभी नहीं बोलती दुनिया में क्या है मुझसे अच्छा।

पता है जीवन में सबसे अच्छी बात क्या है? जीवन में किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है, सबसे अच्छी बात है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। और हम जीवन में यही चाहेंगे कि हमें सारी अच्छी चीजें मिलती रहें, लेकिन उसके लिए हमें भी वही करना चाहिए जो हमें चाहिए, उसके लिए वही देना चाहिए। जी हाँ, प्यार बांटते चलो, प्यार मिलता रहेगा।